तेरा इन्हें की आख दी का इस नाम सिमर प्रभ अपना गुरसिख अमृत वेले उठ जा इशनान कर ते इशनान करके अपने प्रभु का सिमरन कर नाम दे विच लीन हो जा सिमरन दे विच जुड़ जा यही तेरी रहनी यही मर्यादा है यही गुरमत है इस नाम सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिगड़ लाथे प्रभ सरणा प्रत्ये भय संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुपाठ

जैसे कपने कपड़े बुनने वाला जुलाहा एक एक तागे की तंद को जोड़ जोड़ कर कपड़ा बनाता है, पर ऐसा भी हो जाता है जब ये तागों की तंदें उलझ जाती हैं तो कपड़ा बनना रुक जाता है। जो कपड़ा बनाने का कार्य है रुक जाएगा। जितनी देर तक इन उलझियों हुई तंदों को कोई सुलझाता नहीं, अपने आप तो जे उलझने मुकेंगी नहीं, सुलझाना ही पड़ेगा। इसको सुलझाने के लिए जिसको सुलझाना आता है वही सुलझा सकता है, पर जितनी देर ये सुलझेगी नहीं आगे का काम बंद हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही मालूम होता है हमारे जीवन में उलझने ही उलझने हैं। वो सभी उलझने हमारी अपनी ही डाली हुई हैं। मुर्शे का जो बर्ताव है, स्वभाव है, इसने हमेशा ही सदा ही उलझने डाली है, सुलझाना इसको आता नहीं। और आत्मिक जीवन जीने के लिए सुलझाना बहुत अति जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। देखना कैसी उलझने हैं। पितर शब्द में बताया, शरीर रूपी कुआं है, कूटा एक शरीर रूपी कुआं है, जो कैसी उलझने हैं, कैसे सुलझेंगी, अपने आप तो सुलझेंगी नहीं। शरीर रूपी एक कुआं है, उस कुएं में पांच चरखी लगी हुई है, पांच ज्ञान इंद्रों की, और ऐसी बुद्धि जो विवेक नहीं, जो बुरे और भले की विचार करने वाली नहीं, वो इस शरीर रूपी कुएं से एक टूटी हुई रस्सी, टूटी हुई लाज के साथ बुरी वासनाओं का पानी भरती जा रही है। और देखना, रस्सी तो टूटी पड़ी लेकिन टूटती जा रही है, लेकिन श्री रूपी कुएं से ऐसी बुद्ध जो विवेक नहीं, वो मंदी वासनाओं का, विकारों का, बुरे कर्मों का पानी भर रही है, परती जा रही है। एक पितर शब्द में और बोला, ओहो जे दिससे खूहड़ी कौन लाज बहारी, लाज घड़ी श्यों टूट पड़ी उड़ चली पनेहारी। पनेहारी क्या करेगी, जब रस्सी टूट जाएगी, लाज टूट जाएगी, क्या मिलेगा आपको, आखिरकार तो पछताना ही पड़ेगा। ऐसे ही उलझने हैं हमारी जीवन में। देखना किसी की 20 साल की लाज टूट गई, किसी की 30 साल की, किसी की 40 साल की, किसी की 50 साल की, किसी की 60 साल की, कम हो गई आंखों वाली, इतना बूढ़ा हो गया अभी भी
बुरी वासनाओं का पानी भरता है, अभी भी विकारों का पानी भरता है, अभी भी इसको शांति नहीं। देखना हम जीवन में कितना कुछ खा गए होंगे, कितना पानी पिया होगा, कितना भोजन लिया होगा, कितने मेवे खाए होंगे, इसका कोई लेखा जोखा है? सब कुछ खाकर भी हम भूखे के भूखे हैं। आखो भाई, इतना बूढ़ा हो गया, 60 साल की रस्सी टूट गई, आंखों में तो दिखाई नहीं देता। थाके नैन सरवन थाके, थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना थाक समाए। अखा आंखें जवाब देगी, देखता कम है, कानों में सुनाई नहीं देता। आज जो जीभ है बोलती नहीं, तत्लाती है। आखो भाई, मात को क्या हो गया? बूढ़े की मात को सब बोलते हैं, ये तो बूढ़ा हो गया, इसकी तो जो बुद्धि है ना, इसकी मात भी 72 की हो गई। जे बूढ़े को तो हम सोच भी सोचनी ठीक नहीं आती। सब कुछ इसका कम हो गया, बल कम हो गया, इसके जो ज्ञान इंद्रे वो साथ नहीं देते, कर्म इंद्रे भी साथ नहीं देते, लेकिन अभी भी माया का मोह नहीं टूटा। आखो वाहिगुरु, अभी भी माया के मोह की जाल के गिरफ्त में अपने आप को बांधा हुआ है। एक ना थाक समाया, एक पितृ शब्द में और बोलते हैं। एक कुआं में एक गिर गया, बहुत अंधेरा था, उसको अचानक अचन चेत एक लज एक रस्सी हाथ में आ गई। उसने सोचा काम बन गया, अब तो बाहर निकल आएंगे। क्या देखा, जब ऊपर चढ़ने लगा, उस बंधी हुई रस्सी को पकड़कर वहां एक तुपका तुपका तुपका शहद का डिगरा था, माखियों का डिगरा था, वो उसकी जबान में आ गिरा, उसको मीठा लगा। उसने सोचा कोई बात नहीं, बाहर तो फिर आ जाएंगे, पहले हम मीठा खा लें। वो मीठा खाने में मस्त हो गया। इतने में क्या हुआ, जहां पर वो रस्सी बनी हुई थी वहां एक चिट्टा चूहा, एक काला, उस रस्सी को काट दिया। आखो भाई, ओ खूह में डिग पड़ा। ऐसे सतगुरु बोलते हैं, अनदिन मूसा लाज चुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई। देखना संसार रूपी कुएं में हम गिर पड़े हैं, श्वासों की रस्सी हमें मिली। इस मनुष्य जामे को सफल बनाने के लिए हम तो अपनी जीभ के चस्कों, पदार्थों के लोभ के इतने मस्त हो गए, हम की श्वासों रूपी लस्सी तो टूट गई पर हासिल कुछ नहीं किया। ऐसे एक दृष्टांत एक महात्मा देते थे हमें, जब हम छोटे थे, कहते एक सांप के मुख में एक मेंढक आ गया। उस मेंढक ने अपना मुख खोल लिया, दूसरे मेंढक ने पूछा ये क्या करें, आप तो मरने लगे हैं, तो आपने मुंह क्यों खोला? कहते क्या पता मरते मरते कोई मच्छर मुंह में आ जाए। आखो भाई, ऐसा हमें बताया गया। बूढ़ा तो हो गया, देखना किसे समय भी अंत काल आ सकता है। आखो भाई, पर हम ऐसी उलझन में बंधे हुए हैं कि हमें आयु तो कम हो रही है लेकिन वो बुरे विकार कम नहीं हुए।
वो ऐसे ही है। देख लेना, किसी को ये बताओ, कभी कह कर देख लेना, अरे भाई नाम जप ले, आखो भाई करो, बहुत कुछ खा लिया पी लिया, अब तो नाम जप ले, किसको पूछ ले। हम भी कहते हैं आप भी पूछ कर देख लें। हम पूछते हैं, एक ही हमें उसका जवाब मिलता है, क्या करें अभी नहीं, अभी तो हमने बहुत काम करने हैं, अपने कुटुंब को पालना है, उसको काम लगाना है, अभी तो हमारे सिर पर हमारे कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, हमारे कंधों पर। हम सब काम कर लें फिर हम नाम जपेंगे, पहले तो काम तो मुका लें, काम मुका लेंगे, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर लेंगे, जिम्मेदारियों को तो फिर कर लेंगे, नाम जप लेंगे। लेकिन उससे ये पूछना चाहिए, क्या किसी ने गारंटी ली हुई है कि हम बूढ़े होकर मरेंगे। किसी ने ऐसी गारंटी ली है कि हम सब जिम्मेवारियों को पूरा कर कर मरेंगे। हमने तो देखा है केते गर्भ गले, हमने देखा कितने बालिक कितने जवान जोबन भर में चले गए संसार से। पितृवाणी में क्या है, न बारिक न जोबन न बिरदी कछ बंद, ओ वेला न बूझी है जो आए पर जम फंद। कितने आए कितने चले गए, ये भी बताया गया, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन्म है सो जानो मुआ, गोविंद भगत अस्त्र है थिया। देखना, जब किसान बोता है ना, उसको ये यकीन है, भरोसा होता है कि जो मैं बोआ है उसको काटना जरूर है। हर किसान जो भी हो, जो धरती में बोता है, ऐसा भरोसा करता है एक दिन उसको काटना है। जो जन्म में सो जन्म हुआ, ऐसे ही जिसने जन्म ले लिया, यकीन करना उसने एक दिन मरना भी जरूर है। जिसने भी जन्म ले लिया वो मरेगा। जब हम ने देखा एक खेत में, एक खेत का रखवाला किसान ने वहां पर बिठा दिया राखी करने के लिए, जब राखी करने के लिए वो गया, उसके जाने से पहले उस खेत में ऐसी फसलें थी जिनको ऐसे फल लगे हुए थे जो पक रहे थे, और उसके जाने से पहले ऐसा भी देखा उसने, ऐसी फसलें भी थी जिनको फूल आए हुए थे, फूलों ने फल बनना था। उसने देखा ऐसी फसलें भी थी जो धरती में पुंगर रही थी, उसके सामने भी बोई गई। देखो रखवाला तो खेत की राखी करता है, किसी को भी खेत में अंदर नहीं जाने देता। कच्ची फसल तो क्या, वो पक्की भी काटने नहीं देता, लेकिन खेत का मालिक आ जाता है, खेत का मालिक आकर उस खेत में जाता है, राखी करने वाला उसको सलाम भी बुलाता है। राखी करने वाले के सामने सामने क्या हो रहा है वो देखता है, ये मालिक के क्या हो गया, इस किसान को क्या होगा, ये पक्की फसल की बजाय कच्ची क्यों काट रहा है। अखुवाई करो,
लेकिन राखी करने वाला मजबूर है। वो तो ये बोलता है ये मालिक है, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे समझा सकते हैं, ऐसे ना करो ऐसे करो। ऐसे ही जब हम संसार में आए, हमारे आने से पहले हम हमारे बुजुर्ग माता पिता दादा दादी आदि ऐसे बुजुर्ग आए हुए थे, हमारे आने से हमारे घर में बहनें आई, आंखों आए, मेरे भाई आए, मेरे आने से मेरे घर में बेटी आई, बेटे आए। देखो हम आए, सब परिवार देखा, किसे की क्या मजाल है, हमारे किसे छोकरे को किसे बुजुर्ग को कोई बोल सके, हम झगड़ा करते हैं। लेकिन जब मालिक प्रभु आप आ जाता है, वो क्या करता है, कभी 5 साल का बूटा ले जाता है, कभी 10 साल का ले जाता है, कभी 50 साल का ले जाता है, कभी 60 साल का ले जाता है। हम क्या करें, हम तो यही बोलते हैं, जिस ठाकर सियो नहीं चारा ताको की जय सत नमस्कार। हम तो यही बोलते हैं, नानक बोलन चखना दुख छड मंगी है सुख, सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख, जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप। जिथे बहस नहीं कर सकते, आगे कुछ नहीं कह सकते, वहां पर तो चुप ही करनी पड़ती है। ऐसे भी हो जाता है खेत वहां पर ही रह जाए, रखवाले कोई ले जाए। ऐसे भी हो जाता है परिवार यहां ही, हम अपने आप को उस परिवार का मुखी मानते थे, वो मुखी कोई ले जाता है। इसलिए समझाते हैं, आप तो कहते अभी तो नहीं, हम जिम्मेदारियों को पूरा कर कर मरेंगे, फिर नाम जप लेंगे। अरे भाई कैसे जपेगा, जब नैनो नीर पहे तन खीना पे केश तुदवानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे परानी, जब आपका गला खाऊं खाऊं करेगा फिर जप लेगा, आंखों में पानी निरंतर बढ़ेगा बहेगा फिर जप लेगा, नहीं जप सकेगा। कहते अरे भाई मैं आपको बात बताता हूं, आपने तो क्या करना है, क्या निभाना है, आपके जो शरीर के अंग है ना, उन अंगों ने ही आपको वेला कर देना है। भाई गुरदास भी बोले, अन्ना लूला पिंगला तन थक्का मन दै दिसता, आंखें होते हुए अंधा हो गया, पैर होते हुए लंगड़ा हो गया। मैंने तो देखा, आपने देखा है, जब बालक था तब भी सहारे की जरूरत होती थी, बूढ़ा हो गया अब भी। बालक अवस्था में दांत नहीं थे, बूढ़ा हुआ तब भी। बालक अवस्था में भी कांपता था, बूढ़ा हुआ तब भी। बालक अवस्था में तत्लाती जबान से मांगता था, बूढ़ा हुआ तब भी। अरे सोचो भाई, जब नाम जपने का समय है क्यों नहीं जपते। आखो भाई, ऐसी उलझन में बंधा हुआ आज कह रहे हैं, कायरे मन बिखिया बन जाए, विषय विकारों के जंगल में क्यों जा रहा है। आखो भाई, अरे नाम क्यों नहीं लेता परमात्मा का, जिसने आपकी हर समय सहायता की है, सहाय हुआ है, आगे भी होगा।
भूलो रे ठग मूरी खाए। एक बात मैं आपको बताता हूं, ऐसे लगता है इस मनुष्य ने परमपिता परमात्मा को गवाया नहीं, भुलाया है। आखो वाहेगुरु। मैं फिर बोल दू, इस मनुष्य ने प्रभु को गवाया नहीं, भुलाया है। देखना जे हमने गवा दिया होता ना, एक बुरकी भी हम मुख में नहीं डाल सकते। आखो वाहेगुरु। उसको गवाकर तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते, उसको गवाकर तो हम बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, उसको गवाकर को तो जी भी नहीं सकते। यह सच्चाई बात है, हमें उसको गवाया नहीं, भुलाया है। आखो वाहिगुरु। जब हम ये बोलते हैं भुलाया है, तो पितृ वाणी में ऐसा संकेत दिया है, ए भूला नहीं भुलाया गया है। आखो वाहिगुरु। भूलो रे, भगत जी ने कमाल कर दी, बिस्माती विचार प्रगट कर दिए। आखो वाहिगुरु। भूलो रे, देखना ये भूला नहीं, इसको भुलाया गया है। मान मुख भूले भुलाई है, भूली थोर न कर। सवाल करने वाले ये करते हैं, आप कहते हैं भुलाया गया, तो किसने भुलाया है? आखो भाई, आपने ये बोला कि भूला नहीं भुलाया गया है, तो किसने भुलाया? ताशाहिब कहते हैं बाबा माया भरम भुलाए। आखो भाई, इसको माया ने भुला दिया, माया ने पुलावड़ों से भुला दिया। भुलावड़े भुली पुल पुल पच्छो ताणी, फिर छोड़ अड़ी सुती फिर की सार ना जानी। ए माया के पुलावड़ों में भूल गया। फिर सवाल करते हैं, ये तो 84 लाख जूनों का सरदार था, इसको तो सब बोलते थे बहुत सुंदर, बहुत चतर, बहुत सियाना, ये भूला क्यों? क्यों भुलावड़े में आया? आखो वाहेगुरु। ये भुलावड़े में क्यों भूला और कैसे भूला? जब हमें ये बोला भूलो रे ठग मूरी खाए, आखो वाहेगुरु, इसको माया ने कैसे भुला दिया? कहते हुआ क्या, इस माया ने इसको ठग मूरी ठग बूटी सुंगा दी। आखो वाहेगुरु। जय ऐसे समझ ले कि इस माया ने इसको ठग बूटी खिला दी, ठग ओरी भूलो रे ठग मूरी खाए। ए पलावड़ों में आकर भूल गया, इसने माया की ठग मूरी खा ली, ठग बूटी खा ली। कहते फिर क्या हुआ? कहते रतन पदार्थ खोया ठगया मुठा जाए। कहते हुआ क्या, जब इसने ठग बूटी खाई तो इसका रतन पदार्थ ज्ञान का पदार्थ जो इसको सूझ थी वो जाती रही। ये तो ये भूल ही गया कि मैं इंसान भी हूं कि नहीं। ये भूल ही गया कि मैं मनुष्य भी हूं कि नहीं। देखना मन करके मनुष्य है, तन कर नहीं। मनुष्य होता ही मन कर, जे अगर मन वाला मनुख होकर मनुष्य होकर मन को नहीं पहचानता, सिर्फ तन को पहचानता है, तो इसकी वृत्ति पशु वृत्ति है। जे मन वाला मनुष्य होकर आत्मा को जानता है तो महात्मा है,
जब हम मन वाले मनुष्य होकर सिर्फ तन को देखेंगे, मन हमारा जरूर मैला होगा। जब मन वाला मनुष्य मन को आत्मा की ओर ले जाता है तो मन निर्मल हो जाएगा। हमारा मन मैला क्यों है कि हम तन की तरफ झुकाव रखते हैं, शरीरों की तरफ झुकाव रखते हैं, शरीरों को देखते हैं, शरीर में रहने वाले को नहीं। आंखों वाहेगुरु, हम शरीरों को तो पहचानते हैं, जो शरीर में आप नारायण रहता है उसको पहचानते ही नहीं। आंखों वाहेगुरु, जो इस मंदिर में भगवान रहता है उसको तो पहचानते नहीं। तो फिर मन मैला होता है, उसके पहचाने तो बिना मैला होगा, जरूर होगा, होता रहेगा। आखो वाहेगुरु, आखो वाहेगुरु, वाहेगुरु। अब कहते हैं कि ये बहुत सियाना था, 84 लाख जूनों का सरदार, फिर इसने ये ठग मूरी क्यों खाई? तो आज के शब्द में कहते ऐसे हुआ, जैसे मीन पानी में रहे काल जाल की सुध न लहे, जैसे मछली पानी में रहती है, पानी में रहकर भी ये नहीं जान सकी कि पानी हमारा जीवन है, ये भी नहीं जान सकी जे जो जाल डाला गया है ये हमारी मौत है। मैं नहीं कहता, सतगुरु कहते हैं, मछली जाल ना जानिया सर खारा असगाह, अत सियाणी सुंदरी क्यों कीतो विसाह, कीते कारण पाकड़ी काल न टले सरा। हुण अपने कीते कारण पकड़ी गई है, बड़ी सुंदर सी, सियाणी सी। सतगुरु कहंदे इसने भरोसा क्यों कीता? अगली पंक्ति विच बोले भगत जी, जेबा स्वादी लीलत लोहो, अपने जीभ दे स्वादां करके मारी गई। ए मछली अपने जीभ दे स्वादां करके मारी गई, ऐसी जीभ दे स्वादां करके मारी गई कि लोहे दी कुंडी नूं ही निकल गई ते शिकारी दे जाल विच फस गई। जेबा स्वादी लीलत लोहो, लोहे दी कुंडी नूं निकल गई। ते साहिब बोले, भाई रे इउं सिर जाणो काल, ज्यों मच्छी त्यों मानसा पवै अचिंता जाल। आखो वाहिगुरु, जिवें मच्छी ते जाल पै जांदा है। आखो वाहिगुरु, अचिंता ही। इसी तरह समझाते हैं हमें, ऐसे करो। आखो वाहिगुरु, ऐसे करो भाई। ये मनुष्य भी नहीं जान सका कि परमात्मा की बंदगी हमारा जीवन है, माया का जाल हमारी मौत है। ये जान लेता तो परमात्मा की बंदगी में लीन हो जाता और जीव के चस्कों और पदार्थों के पोगों के लालच में ना आता। ऐसे बोले हैं भगत नामदेव जी, जैसे ए मछली जीव के स्वादों के कारण पाकरी गई, शिकारी के जाल में आ गई, तैसे ही ये मनुष्य पदार्थों के भोगों और जीव के चस्कों लाभ और लोभ की गिरफ्त में बंधा हुआ, ऐसे कनक कामनी बांधियो मोह, सुंदर स्त्री और पदार्थ सोना आदि इस दे मोह पा माया दे मोह दे रूप रंगा विच इतना मस्त हो जाता है कि इस नूं अपना आप भुल जाता है ते माया दे जाल विच। आखो वाहिगुरु, अपने आप को भुलाकर
माया के बंधन में आ जाता है। और फिर आगे समझाते हैं, कहते देखना जिमें मधुमक्खी शहद की मक्खी आखो वाहिर शहद तो इकट्ठा करती है, दूसरे को डंग मारकर दूसरे को जहरीला डंग मारती है। और इसे मालूम नहीं, इस मक्खी को मालूम नहीं आखिरकार क्या मिलेगा, आपके मुख में स्वा तुआ लेने वाला और कोई ले जाएगा। ऐसे ही समझाते हैं जैसे गौ अपने बछेरे के लिए दूध संचन करती है, पर अहीर आता है गला बांध कर ले जाता है। फिर समझाते हैं आप तो माया के कारण बहुत संचन करने के लिए बहुत कालना कालते हैं, बहुत कमाई करते हैं, लेकिन आपने समझा नहीं एक दिन ऐसा होगा धन तो धरती में ही दबा रह जाएगा और आपका तन ही मिट्टी बन जाएगा। आंखों भाई कहते एक धनी था, उसने बहुत धन संचन किया। ऐसे धनी ने संचन कर एक पीपे में उस धन को संचन कर धरती में गाड़ दिया और ऊपर बिस्तर लगाकर सो जाता, किसी को देखने ना देता। अपने कुटुंब के किसी भी रिश्ते वाले को देखने नहीं देता, बहुत उसकी राखी करता। सारा जिंदगी ही सारा जीवन ही उस माया को संचन करने में गुजार दिया। कहते एक दिन ऐसा हुआ जमदूत उसको लेने आ गए। वो बोला ऐसे करो भाई मुझे छोड़ दो, इस तन का 1/4 हिस्सा ले लो। जमदूतों ने पीटा ये धन आगे नहीं जा सकता, कहते आधा ले लो। फिर पीटा कहते पूरा ले लो मुझे छोड़ जाओ। फिर पीटा कहते भाई ये अगर मुझे नहीं छोड़ते एक बार मुझे देखने तो दो, दारा है और बोलता है अरे माया आप तो बहुत पत्थर दिल निकली, आपने क्या किया, मैंने तो सारी जिंदगी सारा जीवन आपकी राखी की, लेकिन आप दो कदम भी मेरे साथ नहीं चलती, कैसी आप पत्थर दिल निकली। माया बोली अरे मैं क्या करूं, आपने मेरे साथ क्या किया, भगवान ने मुझे बनाया था भूखों को भोजन खिलाने के लिए, भगवान ने मुझे बनाया था दुखियों की सेवा करने के लिए,

कहते हैं, अरे भाई ये जीवन जीते हुए भगवान का सहारा ले लें, भगवान का आसरा ले लें, भगवान के नाम धन की कमाई करें, शरीर तो आगे नहीं जाएगा लेकिन परमात्मा का नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा। कहते पर ये बात नाम तन कमाने की और आत्मक जीवन की जुगत की तब ही पूरी होती है जब हमें अब मोहे मिलियो है जियावन हारा, जब पूरा सतगुरु मिल जाता है, पूरा सतगुरु मिल जाए जीवन की जुगत आ जाती है, हम कैसे जिए। और एक पितृ शब्द में सतगुरु कैसे कहते हैं, आओ पहले वो शब्द पढ़ लें।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उपदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखते ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान दे भगती लाएं हास्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिमें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां कि कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक है पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਨਾਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਤਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਬੇਕਸਾਂ ਰਾ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ, ਕਾਸ਼ਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰਾਰ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸਮ ਫਾਇਲ। ਤੇ ਸਰਾਰ ਸਿਰ ਵਾਹਦ ਸਰਾਰ ਜਮਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਹੁ ਬਚਨ। ਸਰਾਰ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤੇ ਭੇਦ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਏ ਕਿ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਲੋਕ ਤਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਏਡਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ ਹਿਰਾਜ ਵਿਲੋਕਤ ਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰੇ। ਰੋਖ ਮੀਨਸ ਰੁਖੀਆਂ, ਰੂਹਾਨ ਜਮਾ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਚਕਦਾਰ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੜਾਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਲੱਕੜੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਰ ਗਈ, ਅਕੜ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਤਕਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜੀ ਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਕੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਕੜਦਾ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਵਿਚ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਕੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਆਕੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਰੁੱਖੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਵਾ ਇਕ ਛਿੰਨ ਇਕ ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਰਚਨਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੁੱਪ, ਮੱਟੀ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਮੁਨਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਦਿਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੂਰੋ ਮਲਾਇਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੁਖਦੰਤ ਰਸਨ ਕੱਸ ਜਾਏ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਭ ਹਾਜਤਾਂ ਰਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਂ? ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਾਤਾ? ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਖੁੱਟ ਨੇ।
मुहे दूजी नाही ठौर जिसके हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसी दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखण चाहता है मालिक मकान या मालिक दुकान कहता है माफ करो बाबा माफ करो बाबा, वो अगे तुर जाता है। सारे बाजार च गया माफ करो बाबा ही हुंदी गई, कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघिया है, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू? उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है? जदो मैं दुआ कीती, जदो इल्तजा कीती, जदो खाली ठूठा अगे कीता, ते उन्हें अगे कहा माफ कर बाबा माफ कर बाबा। इस तरह मैं सारे घर दे अगे दी आया, बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदा कहते मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल तुरदा गया, बाजार मुक गया घर मुक गया, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे ताइयो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखणा ना रहंदा। हुंदा भी एवें किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उथे खलोता, तेनू क्या सी जा अगे, फिर कम लग गए तू फिर इथे खलोता है, गया क्यों नहीं? वो पक्का मंगता है ते निश्चय वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने, किसे निमंत्रण दिता है ते इथे अगे आ जा, तुसी ता कहीं जाओ अगे चल माफ कर, मैं ता हुण तेरा दर मान लिया है तेरी दहलीज मान ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू यह निश्चय हो गया है मुहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता टीठ होके नहीं मंगदा, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीठ होके नहीं मंगदा, टीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उथे ही रहना, जब तक कोई टीठ होके नहीं मंगदा उदो तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नूं भी ऐसा ही एक जगह आख्या टीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आडीठ धर्म आडीठ धर्म अत टीठ करम। वाहिगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता आडीठ धर्म अत टीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासा करते जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करण कारण समर्थ हो कर दई है, आडीठ धर्म अत टीठ करम। जब तक किसी मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मोहतकित दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत टीठ निश्चा ना हो जाए परमेश्वर उत्ते कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए आपा समर्पण ना कर देवे उदो तक कई बारी इनू शक्का शकूकां दा शुभात दा शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी अपने तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नूं छड के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चा धार लिया मोहे

सागर ज्ञान दा, सागर आत्मक सुखां दा, सागर अकाल पुरख दी सच्चाई ते वडियाई दा, सागर सच्ची ते

लक्ष्मी पैसे अनुके माया नू हुण जिहड़ा मत्था टेकदा है वो पैसे भी रखदा है ते लक्ष्मी इस तरह वरसन लग पई जिस तरह मीह पैंदा है भाव गुरु साहिबां दे चरणां दे अगे माया दा ढेर लग गया।

लोटा गुआच गया, पैसे गुआच गए, ता सारे पांड सिद्धां को लगाए, साडा लोटा लप दियो किसे ने चुक लिया, हुण लुकोया सिद्धां नहीं सी, लभ के किवें देंदे। सिद्धां ने लुको ए लोटा, सिद्धां ने लोटा जान के लुकोया सी, असी लुकोवांगे, पांड साडे कोल आणगे, असी भेजांगे गुरु नानक दे कोल। साडा लुकोया लोटा कोई लप नहीं सकदा, ते गुरु नानक हार जावेगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ओही गल सिद्धा ने पंडा नूं कहा, ओ जिहड़ा गुरु नानक बैठा है, जाओ ओहदे कोल, उस नूं आखो जे ओहदे विच कोई शक्ति है ते तुहाडा लोटा लभ देवे। ये सारे पांड धन गुरु नानक साहब दे कोल गए ते बेनती की, महाराज साडा माया वाला लोटा लभ दिओ, किसे ने चुक लिया। तां भाई गुरदास जी बयान करते,

आखो सतनाम श्री वाहे। पंडा ने बेनती की, बाबा जानी जान पुरख, वो बाबा नानक वो ते जानी जान। सिद्धा ने जिथे लोटा लुकोया सी, गुरु नानक साहब ने उथों कढ दिता। हुण लोक जय जयकार करन लग पे। सिद्धा दा लुकोया लोटा कोई लब नहीं सी सकदा, पर बाबे नानक ने लभ दिता। गुरु नानक दी जय जयकार होण लग पई, पर सिद्धा नूं होर गुस्सा चढ़ गया।

तू पखंड करना है। पेख उतार उदास दा, पहला तू उदासियां वाले कपड़े पाए, हुण संसारी कपड़े पा ले। पंगरनाथ कहंदा है, ऐ नानक तू ग्रिस्ती है, तू व्याह कीता है, तेरे बच्चे हैं। तो जिहड़ा ग्रिस्ती है, तियां पुत्रां वाला है, वो रब दा भगत नहीं हो सकता, वो जोगी नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो सकता। ये गल पंगरनाथ ने कही। हुण सत्संग तुसी सारे ग्रिस्ती बैठे हो, तियां पुत्रां वाले परिवार वाले, पंगरनाथ दा यह सवाल भी सुन लो। पंगरनाथ कहंदा है, ग्रिस्ती उच्चा नहीं हो सकता, ग्रिस्ती रब दा भगत नहीं हो सकता, जोगी नहीं हो सकता, संत नहीं हो सकता, ग्रिस्ती माड़ा है। ते पंगरनाथ दा विचार है, जोगियां दा विचार है, ते गुरु नानक दा की विचार है, वो भी सरवण करो।

होए अतीत। अतीत कहंदे ने जिहड़ा घर बार छड दे दे। साहब जी कहन लगे कमाल है, एक पासे कहंदे उह संसार माड़ा है, एक पासे कहंदे उह संसार रब दी खेड है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। एक पासे कहंदे उह संसार माड़ा है, गृहस्थी माड़ा है, गृहस्थ माड़ा है। छड़दा ते बंदा उसे चीज नूं है ना जिहड़ी चीज माड़ी होवे। होए अतीत गृहस्थ तज, तज कहंदे ने छड़ना, अतीत बन गए हो, घर बार छड़ दिता, तिया पुत्र छड़ दिते, घर वालियां नूं मां कह के जंगलां विच जाके बह गए हो। पर एक एहो जिहा तुहाडा जोग है, एक एहो जिहा तुहाडा धर्म है। एक पासे गृहस्थियां नूं माड़ा कहंदे, ते जद भुख लगती है फिर ठूठे फड़ के इन्हां दे घर मंगण क्यों जांदे हो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गृहस्थियां दीआं पक्कीआं खांदे हो ते गृहस्थियां नूं ही माड़ा कहंदे हो, इहो ही तुहाडा जोग है। होए अतीत ग्रिस्त तज, फिर उनके घर मंगण जाई। जिन्हां नूं माड़ा कहंदे हो उन्हां दा ही दित्ता खांदे। हुण इक विचार है, संतां दे डेरे, जोगियां दे डेरे, विहंगवां दे डेरे किदे सिर ते चलदे? सिमरन प्रभु दा करदे ने, पर इन्हां नूं दान पुन कौन करदा? ग्रिस्ती करदे। साहब जी कहन लगे तुहाडे नालों ग्रिस्ती उच्चा, जेड़ा काम कार करदा, कमाई करदा, वो तिया पुत्रां दी पालना भी करदा, वो तुहाडे वर्गे जोगियां सन्यासियां साधु संतां दी भी सेवा करदा, तुहाडे नालों ग्रिस्ती उच्चा है। कितना काम करदा? तिया पुत्रां नूं पालदा, वो महापुरुषां दी, साधा संतां दी, गरीब गुरबे दी अपनी कमाई विचों सेवा करदा है। फिर वो संसार दी सेवा करदा है, समाज दी सेवा करदा है। साहब जी कहन लगे साडी निगाह विच गृहस्थी सब तो उत्तम है। गृहस्थी जोगी है, संत है, भगत है, जिहड़ा परिवार नूं पालदा है, जिहड़ा समाज नूं पालदा है, ते जिहड़ा तुहाडे वर्गे वेले जोगियां नूं भी खाण नूं दिंदा। आखो सतनाम श्री। हुण है ते सच, पर सच सुनना औखा बड़ा है। आखो सतनाम श्री। बड़ा गुस्सा चढ़िया, हुण कई डेरे बना के बह जांदे ने। माफ करना, किसी की बुराई नहीं करते, एक विचार है। ते लोकां नूं कहणगे सारा कुछ छड्ड दिओ, सारा कुछ छड्ड दिओ। ते जे संसार दे लोक सारा कुछ छड के बह जाणगे ते फिर डेरे भी किवें चलणगे? नाले कहंदे ने सारा कुछ छड दिओ, ते नाले कही जाणगे जी डेरे वास्ते माया भेजो डेरा बनाना। इट्टां भी चाहीदियां ने, सीमेंट भी चाहीदा रहण वास्ते, आराम दे समान भी चाहीदे ने। ते जे सारा संसार ही सारा कुछ छड के बह जाए, सारे गृहस्थी गृहस्थ छड के जंगलां विच जाके बह जाणगे, ते संसार दी खेड किवें चली? फिर कहंदे ने नहीं जी, गृहस्थ चाहीदा ही नहीं, ये हुण परमात्मा दी खेड है। परमात्मा ने खेड बनाई है, आदमी औरत बनाया, आदमी औरत तों संसार दी खेड चलदी, तिया पुत्र पैदा हुंदे। ते जे सारे आदमी घर वालियां नूं मावां बनाण लगे ते धन, गुरु नानक साहब कहंदे ने उन्हां जोगियां नूं जेड़ा संसार तों डर गया, जेड़ा परिवार तों ही डर गया, जेड़ा मोह माया तों डर के जंगलां विच जाके बह गया, परमेश्वर की खेड तू जिहड़ा डर गया, वह परमात्मा की प्राप्ति करेगा? आखो सतनाम श्री वाहिगुरु।
ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਭਾਗੇ ਫਿਰਤੇ ਹੋ, ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਕਿਆ ਤੁਮ ਪਾਓਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਮਰਦ ਬਣੋ। ਮਰਦ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਈ ਮਰਦ ਮਰਦ ਮਰਦਾਨਾ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੋ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਹ ਉਪਾਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲਖ ਦਾ ਕਮਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਖੇ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਫ਼ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ, ਕਮਰਾ ਜਿਉਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਰਾ ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲਖ ਲੱਗਿਆਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸਾਬਤ ਮਰਦ, ਇਹ ਹੈ ਸੂਰਮਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਪਰ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ।

बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्व गले। अष्टपदी, जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने में जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे भोजोन परमावे। तन पूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहा मुक्त आ गए सुख पावे। तनवंता हुए कर गर्भावे तृण समान कछ संग न जावे। बोल लश्कर मानख ऊपर करे आस पल पीतर ताका हुए विनाश। सबदे आप जाने बलवंत खिन में हुए जाए पसमंत। किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सोजन नानक दरगह परवान। कोट कर्म करे हो तारे शर्म पावे सगले विरधारे। अनेक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार। अनेक जतन कर आत्म नहीं धरवे हर दरगह को कैसे गवे। आपस को जो पला कहावे तिसे पलाई निकट न आवे। सर्व की रेन जाका मन हुए कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए। जावे जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग नेचर ना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभु के पाते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहस कटे लख को उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग भिख्या के करे न तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ मिलते सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पागी किसे पढ़ापत होए। कर्ण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप। कर्ण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप पर सोए। जो किच कीनो सो अपने रंग सबते दूर सबू कै संग। बूझे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक। मरे न बिन से आवे न जाए नानक सद ही रह समाए। आप उपदेश है समझे आपे रचिया सब कै साथ। आप कीनो आपन विस्तार सब कुछ उसका ओ करने हार। उसते पिन कहो किछ होए थान थनंतर एक है सोए। अपने चलत आप करने हार कौतक करे रंग आपार। मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी। सच सच सच सबकीना कोट मदे किने बिल है चीना। पला पला पला तेरा रूप अति सुंदर अपारे अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी।

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल की मैं तेन अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परिया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा, शारीरिक रूप नहीं वेखदा,

धनवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला हो, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिए ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

दो मित्रां नूं आपस विच कम पे आ। एक मित्र ने किया, लै मित्रा मेरा कम करना ही, कह लगा चंगा कर देवांगा। समा पै गया, भुल गया, ना कीता। एक दिन

मैं कोई ना रखना। विश्वास घाती अकिरत पैना, विश्वास घाती किसनू कहिंदे ने, जिहड़ा किसे नू प्यार विच लिया के विसा के मारे, अपना बना के मारे।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा ए शब्द जो आप जी ने सरवण कीता है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नू असी जो खो चुके हैं, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नूं एक यात्रा आखते हैं अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी, इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल, सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उच्चारण कीती है जिथे वो आखदे हन असी मंजिल दे करीब तक ही जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए। पंक्ति सुनने वाली है, कहंदे हन साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहिंदे यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है। पर जे यात्रा नालों, उस दी मंजिल नालों, उस दे डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वद्दी ही जाए, वद्दी ही जाए, वद्दी ही जाए, इसका अर्थ ए होया कि यात्रु नू ए नहीं पता कि ओ जा किधर नू रहा है। बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साडे मुतलक कि तुहाडी हालत ए है कि तुहानू ए पता नहीं तुसी किधरों आ रहे हो और किधर नू जा रहे हो, बस ए आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम। कोई पूछे ते कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो। जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

बहुत भारा इशू है। प्रभ जन्म मरण निवार, इसके बीच देखो एक तरला, एक पुकार, एक बेनती, एक जांचना है कि ऐ प्रभु मेरे ते कृपा कर, मैनू जन्म मरण दे विच्चों निकाल ले, मेरा जन्म मरण खत्म कर दे। प्रभ जन्म मरण निवार, हार पर्यो द्वार, मैं हार के तेरे द्वारे ते आके डिग पिया हूं। तो सात संगत जी, असी अपने जीवन दे विच क्यों नहीं इन्हां तमाम एस्पेक्ट्स के प्रति फिक्रमंद क्यों नहीं, चिंतातुर क्यों नहीं है? गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इस शब्द नू आरंभ इथों कीता है, अमृत काया रह सुखाली। कहिंदे जिस देही च तुसी रह रहे हो, ये देही अते तुसी इस दे नाल जुड़े हुए हो, ये बड़ी सुखाली, बड़ी कंफर्टेबल, बड़े आराम दे विच है। अमृत शब्द उन्होंने वरत्या है, पाप के ये सोचते हो कि हे हमेशा ही रहनी है, ऐसा लगता है कि इसका कदे अंत आना ही नहीं है। हां जो आ जाएगा उदो देखी जाएगी, पर जितनी देर तक अंत नहीं आता, कहते तुसी ऐदा ही रहते हो जिमें कि अमर हो, हमेशा ले हो। अमृत काया रह सुखाली, कहते इस करके इसनू अमर समझी बैठे हो, जींदे तुसी इसे तरह हो जिमें कि हमेशा ही रहना है, अते बड़े सुखाले रहते हो, कोई खास चिंता नहीं है। और जिन्हां गुरु दे वचना दा तीर लग जाता है, वह सुखाले नहीं रहते, वह बेचैन हो जाते हैं। फरीद साहब ने आख्या है ना, कहते हैं

एक बादशाह संसार नूं उतारदे होए जदों सिद्ध मंडली विच पुजे, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे अमोलक दरगाही बचन सुन के सिद्ध बड़े प्रसन्न हो। सिद्धां ने बेनती कीती कि जिस परमात्मा की कथा अकथ है अते जो परमेश्वर सारिआं नूं रिजक दे रहा है, लैण वाले थक जांदे हन, देण वाला कदे नहीं थकदा। वह परमेश्वर जो अनथक है, गरीब नवाज कृपा करो, सानू दसो वह साहब कैसा है, उसकी साहबी कैसी है, उसका नाम कैसा है। तो धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे हन, साचा साहिब साच नाए, वो सच्चा साहिब है, उदा नाम भी सच्चा है।

सच्चे साहब दी हजूरी विच जदों जाइए तां पेटा की रखिए। अलख निरंजन एको वरतै एकै जोत मुरारी, सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी। लाकीरी तो बर्मा तक अकाल पुरख वाहेगुरु दे दर तो ही सारे मंग रहे हैं, ते उस अकाल पुरख वाहेगुरु अगे की रखी। ए तन दौलत पदार्थ तो ओदी देन है और जुगा जुगंतर सानू देंदा आ रहा है, पर असी की रख सकते हैं ओदे अगे। ता तन गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे, भाई अमृत वेले उठ के इशनान करे ते एकाग्र चित हो के मोह के बोलन बोली है जित सुन दरे प्यार। इस मुख दे नाल अकाल पुरख वाहेगुरु दी उस्तत कर, ए उस्तत उसकी बेटा करेगा ए कबूल कर दे। किसी तन दौलत दे वटे प्रसन्नता नहीं मिलनी। तन गुरु नानक पातशाह कह रहे

राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा हुए। इसकी घरवाली भी बहुत धर्मात्मा सी। वड़ी राती उठ के सतसंगत विच जाके बैठना ते फिर राजे दे उठन तो पहला पहला आके फिर आके सौ जाना। इसे तरह कितना समा सतसंग करती रही, नाम दा रंग चढ़दा रहा, अकाल पुरख वाहेगुरु की कृपा होंदी रही। क्योंकि रंग लागत लागत लागत है, जेहो जे कोई संगत विच बैठदा है हौले हौले ओहो जिहा ही रंग चढ़ जांदा। क्योंकि पंछी जेहो जे ब्रिश ते बैठेगा ओहो जे ही फल प्राप्त होणगे। जे अंब दे ब्रिश ते बैठा है तां अंब ही मिलने हैं। इसे तरह मनुख दा जीवन जे साकत पुरशां विच जा पवे तां पापा दा भागी बन जांदा है। जे सत संगत विच जांदा है तां इसते पुन वध जांदे हैं। राजा हरिचंद की घरवाली रोज सतसंगत विच जाके गुरबाणी का कीर्तन सुनना, आनंद मानना, क्योंकि ये भी आत्मा की खुराक है। जिस तरह साडे शरीर नू खुराक की लोड़ है, साडी आत्मा नू भी परमेश्वर के नाम की लोड़ है। वो नाम का भोजन छकती है जो साडे अंदर, जिदे सदके साडा शरीर चल रहा है ना, उसनू ही भोजन की भुख लगती है। पर वो भोजन नाम का शक्ति है। उचारण करो श्री। तो तारा राणी सतसंगत विच रोज जाना ते राजे दे जागन तो पहला पहला आके फिर सौ जाना। अज अचानक राजे दी जाग उगड़ी तां की तकिया कि राणी नहीं सुती। मन विच शक पैदा हो गया कि किधर जांदी है अद्धी राती उठ के। मन विच सोचिया जितने तक कोई अखी ना वेख लईए तां उस तरह एवें किसे नूं कलंक लाउणा या कह देना चंगा नहीं है। चंगी तरह छान बीन कर लैनी चाहीदी है भई किधर जांदी है। तां राजा अज सुता नहीं पर उवें ही कराड़े मारन लग गया। राणी ने समझा भाई हुण आराम विच हो गया। ते राणी सतसंगत वल तुर पई। मगरे मगरे राजा जा रहा है। राणी जदों सतसंग विच जा पहुंची ते मन नूं त्रयास आया भाई चलो किते माड़े पासे तां नहीं ना जांदी, किते माड़े पासे तां नहीं ना गई। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दी भगती विच ही जुड़ी हुई है। पर राजे ने राणी दी एक खड़ाऊ चुक के घर ले आंदी। भाई पुछांगे भाई तेरी दूजी खड़ा किथे है। ते राजे ने आके संदूक विच उस खड़ा नू बंद कर देता। राणी जदों कीर्तन सुनदिया कीर्तन दी समाप्ति हुई ते बाहर निकली तां एक खड़ा दा जोड़ा पिया। बड़ी डरी कि मैं राजे नूं की जवाब देवांगी। जदों पुछेगा भाई दूजी खड़ाम किथे है तो मैं जवाब की देंगी। मुड़ के जाके साध संगत विच जाके बेनती कीती कि साध संगत अरदास करो मेरी दूजी खड़ाम मैनू मिल जावे, मेरी पत रह आवे, मेरी इज्जत रह आवे। जे राजे कोल ए पोल जार हो गया राजा मेरे ते शक करेगा। उचारण करो श्री। सारी संगत ने जदों अरदास कीती तां अकाल पुरख वाहिगुरु ने ओह जी पुरानी खड़ाव परमेश्वर ने भेज दिती। कोई पछाण नहीं सकदा कि ए पुरानी है या नवी है। राणी आके उसी तरह रोज दी तरह सौ गई। सवेरे जदों राजा उठिया तां कहन लगा आ जरा अपनियां खड़ावां तां दे, मेरियां हैन नहीं इत्थे नेड़े ते मैं इशनान कर दवां। उचारण करो श्री वाहिगुरु।
ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਖੜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੇਟੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜਾਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਖੜਾਵ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਖੜਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਏ? ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ। ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀ

0: टेक है क्या गुण तेरे साथ माली शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है कोट अपराधी दरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया पे किया
1: से फिर गर्वास ना पड़े।

मेरे हृदय च कपट है ते तू मेरे कपट नू जानना। मैं भी कुछ जानना, मैं सिर्फ इन्ना जानना कि तैनू बख्शना भी आउंदा। जे तू साडे दिल दियां जानना है ते तैनू जान के फिर बख्शना भी आउंदा। वेख के साडे बारे जान के फिर खिमा कर देन दी भी गल तेरी है, ते जे साडे वल्लों गिणिया जावे ते फिर तां बड़ा मुश्किल है।